आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ये लीजिए
0: मेरे लिए।
1: जी आपकी नजर।

0: नजर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

मुझसे बात। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हे अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का डब बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा
0: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
2: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, कहा हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: है।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

तुम मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

0: बिखरे वाले।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

शुभ संध्या एंड गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, जहां संगीत तो बनता है, हर पल आपको यादगार बनाता है और क्या ही कहें, मस्ती करते हैं हमारे साथ। तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो शो है वो है स्टार ऑफ द वीक, और आज के स्टार बहुत ही खास है, जिसे जाकिर मुरानी जी लेके आए हुए हैं। आज के स्टार है वो है फरदीन खान और फैसल खान, जावेद जाफरी, दीपक तिजोरी और रवि बहल। फरदीन खान के मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही शानदार ये फिल्में हैं, जैसे कि वो नो एंट्री और हे बेबी और फिदा और कितने दूर कितने पास ईडीसी। वैसे अगर हम फैसल खान की बात करें तो जो ये मेला हुआ और क्यामत से क्यामत तक हुआ, जो जीता वही सिकंदर और प्यार का मौसम वगैरह वगैरह। जावेद जाफरी की बात करें तो जीना मरना तेरे संग और तहलका, 100 डेज, धमाल वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे। और दीपक तिजोरी जी की बात करें तो दिल यहाँ पे आशिकी दिल है कि मानता नहीं, और सड़क दिल तेरा आशिक और सजन का घर वगैरह वगैरह फिल्में हैं। रवि बहल जैसे कि वहाँ पे गुलामे मुस्तफा और नरसिम्हा, विजय पथ, अग्निचक्र वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। और वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे दोस्त सरफू भाई सरफराज जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है आपका भी। और आत्माराम पाटिल जी वेलकम करते हैं आपका भी, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और सुनीता गोप जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। लिखते हैं कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, अगर काम करेगा तो सुनिएगा जरूर। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं प्रमोद कुमार जी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और कल कहाँ थे आप अशोक देशमुख जी, कल मैंने मिस किया आपको। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो, आप जुड़ गए, वेलकम है आपका। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, सरायकेला झारखंड से ये भी है। और सरबजीत सेठी जी वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे, वेलकम है आपका भी। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे आदरणीय MD असलम राणा जी हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं इनका भी। और बता दें हमारे BK पंत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी BK पंत जी। सर्वेश भगत जी जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका भी। और यानी कि प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और MD नाजिम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और बता दूं कि आज एक लिसनर, बहुत ही खास लिसनर आरती तिवारी जी की साहबजादी अनिका तिवारी जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वो जिए हजारों साल और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं और सभी को बुलाता हूं, भाई सभी लोग कहाँ हैं। और इस गाने को लेकर आए हुए हमारे बिट्टू कुमार जी, सुनना चाहते हैं फिल्म।

नो एंट्री का वो नायाब गाना कहाँ हो तुम, मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू, कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ प्लीज सभी। ओके, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को, फिर आते हैं।

0: जुड़ चुके हैं एमडी महमूद आलम जी सऊदी अरब रियाद से। वेलकम।
1: हाय हाय हाय चिकनी

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और सभी जुड़ गए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और शंकर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वाह मजा आ गया है पहला ही गाना में सुनकर। बिल्कुल, और आज तो मजा ही आने वाला है, सभी गाने एक से बढ़कर एक आए हुए हैं, सभी का धन्यवाद देते हैं। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पहला ही गाना प्ले कर दिया। जी आपका गाना ऐसा था, सबको बुलाने वाला था ना, इसीलिए बुलाने के लिए सबसे पहले आपका गाना मुझे प्ले करना पड़ा। और अरुण मन्ना जी लिखते हैं कि अमन जी हम भी जुड़ गए हैं आपके प्रोग्राम से, राजकोट से जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सभी दोस्तों को नमस्ते नमस्कार कह रहे हैं। हुकुम चंद जांगिर जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, आपका भी वेलकम करते हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपरहिट लाजवाब डिमांड कहां हो तुम, और आपका ओपनिंग गाना भी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।

0: बहुत बहुत वेलकम है, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, और गुड इवनिंग वेलकम है आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग है, ओके जी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही सुपर डिमांड, मजा आ गया पहले ही गाने में। नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है, और संध्या पटेल जी लिखते हैं सुपर डुपर हिट चॉइस, एंड ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी इतना अच्छा गाना सुना है भाई साहब, उनको धन्यवाद देते हैं। और शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी।
1: और आज आरती तिवारी जी का लड़की का, अनिका तिवारी जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर उनको खूब खुश रखे, आबाद रखे, यही दुआ करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको खूब खुश करें, रखें, और बाप माँ का नाम रोशन करें, यही दुआ है हमारा।
0: धन्यवाद देते हैं आपके आशीर्वाद के लिए हमारे हमारे सर्वेश भगत जी। और निकलस जी जुड़ चुके हैं डेनमार्क से, वेलकम है। लिखते हैं कि वेरी गुड इवनिंग आरजे अमन जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू, प्लीज टेल मी। ओके, तो चलिए अब आप अगला गाना एंजॉय कीजिए। और ये गाना जो है भाई, हम तो सभी से कहेंगे हमसे तुम दोस्ती कर लो ना प्लीज। और ये गाना में शामिल हो रही हैं यानी कि प्रियंका जी और मिसाल अंगा जी, फूलवाग संजू भाव जी और गजानंद जी का पूरा ग्रुप, और अशोक पाल जी, इन सभी की एक ही डिमांड है। तो जिनका जिनका ऑडियो है, जरा ऑडियो प्ले करता हूँ। ऑडियो है हमारे पास शायद दो है, एक यानी कि मिसाल अंगा जी का है और एक हमारे संजू भाव जी का है, तो सुनते हैं।
2: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
2: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ। और अमन सर जी, आज के स्टार ऑफ द वीक में जो कलाकार है, तो ये सभी कलाकार 90s के बहुत सुपरस्टार रहे हैं अमन सर जी। तो आज इसी अवसर पर मुझे रवि बहल और उर्मिला मातोंडकर, इस पर फिल्माया हुआ गाना सुनने का है, और फिल्म का नाम है नरसिम्हा, और गाने के बोल है हमसे तुम दोस्ती कर लो।
0: कर लो, कर लो।
2: अमन सर जी,
0: जी जी बोलिए बोलिए, क्या हुआ, आवाज क्यों रुक गई आपकी? आवाज आपकी बिल्कुल खाली है, क्या आपने कहा है? चलिए कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक बार ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम शट आउट हो जाए। अगला ऑडियो सुनते हैं संजू भाव जी का।
3: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी,
0: जी, जी
3: आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
3: अमन सर जी,
0: जी।
3: कैसन बानी?
0: बहुत ही बढ़िया भाई, रवरा पति कैसन बानी?
3: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोधवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है शुक्रवार और आज की अपनी थीम है स्टार ऑफ द वीक, और आज के आपके कार्यक्रम में दीपक तिजोरी, फरदीन खान, जावेद जाफरी, फैजल खान और रवि बहल, ये पांच दिग्गज अभिनेताओं को हॉटस्टार पर आमंत्रित किया है, और आज के कार्यक्रम में इन्हीं के गीत चलने वाले हैं सर। तो हमने भी रवि बहल इनका एक गीत चुना है सर, फिल्म का नाम है नरसिम्हा, और यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। आप हमें इसी फिल्म का एक गीत सुना दीजिए, जिसे आवाज़ें दिए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक जी इन्होंने, और गीत के बोल सर इस प्रकार है।

0: भी आओ ना।
1: चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं, हमसे तुम दोस्ती कर लो। सभी दोस्तों को डेडिकेट करते हैं हमेशा की तरह बिना ऑडियो को लंबा किए हुए, क्योंकि गाना बहुत लंबा है। और गुरु फरमाइश है तो जाहिर सी बात है गाने को थोड़ा सा लंबा प्ले करना भी पड़ेगा ना। बहुत से दोस्त शामिल है इसमें, और इसी गाने में शामिल है यानी प्रियंका जी भी और हमारे गजानन जी का पूरा ग्रुप है, अशोक पाल जी है। इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, बहुत सारे। और सरवेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं पहले इन्हीं की।
1: आरजे अमन सर जी, स्कूले वक्त संजू भाव जी और गजानंद सलोकर जी पूरे ग्रुप का भाई और भी भाई इसमें शामिल है, भाई या बहन सभी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, इतना अच्छा गाना।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे डी के पंजी लिखते हैं कि सर जी सुपर हिट मिले जुली डिमांड, मजा आ गया सुन के। और नंदनी माँ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं माँ जी आपका, आपको मेरा प्रणाम है। और अब प्रियंका जी लिखती है कि हमसे तुम दोस्ती कर लो, शानदार, थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि ये ग्रुप का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड गजानंद सलोकार जी, संजू भाव जी, मिसाल अंकल जी और प्रियंका जी और सभी की पसंद सुपर हिट लगी है, सभी को धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा नगमा सुनवाने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि ग्रुप का डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, सभी को थैंक यू। और प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि ओ बेबी आओ ना, नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुनकर। और ये फीडबैक क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: अमन सर जी, ओपनिंग सॉन्ग बिट्टू कुमार जी का सॉन्ग और अभी हमारे गजानन ग्रुप। एक से बढ़कर एक शुक्रिया सभी को, आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है। और इसी गाने में शामिल थी यानी कि कायनात जी, और ये डेडिकेट था स्पेशली उनके इन पंडित जी को। ओके जी, थैंक यू सो मच कायनात जी। और एस खानम जी लिखते हैं कि अब ना किसी का दिल दुखाना है, ना किसी पर हक जताना है, बस यूं ही खामोश रहकर दो पल की जिंदगी बिताना है। अच्छा, सो नो दोस्ती एंड नो प्यार, नो गलती एंड नेवर ऑलवेज। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि एनीवे सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत ही अच्छा आपने लिखा भी है। अजय भगत जी लिखते हैं कि वाह अमन जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: वेरी गुड इवनिंग मिस्टर अजय अमन।
0: यस सर,
3: आई हैव टू से थैंक यू सो वेरी मच फॉर अजय वंशिकाजी'स प्रोग्राम। She did very wonderful today. We all love this program. Thank you so very much.
0: Welcome, Nicholas G from Denmark. Welcome sir ji. और यहाँ पर राधा कृष्ण गोप देखते हैं कि सभी दोस्तों का डिमांड शानदार है, और इस डिमांड के लिए तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी है। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं नामे किशन पाल शाक्या जी, वेलकम है आपका भी। रवि महाड़े जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, लिखते हैं कि हमसे तुम दोस्ती कर लो वाला गाना मुझे बहुत प्यार लगे। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो नो एंट्री वाला है ना, और नो एंट्री में बहुत से दोस्त शामिल हो रहे हैं, जैसे कि हमारे ये सुनील कुमार जी तो हैं ही, और इसी में शामिल हो रहे हैं संध्या पटेल जी। आप दोनों के डिमांड इंजॉय कीजिए।

0: इश्क दी गली विच कर एंट्री, ओ इश्क दी गली विच कर एंट्री।
1: वेलकम बैक, और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास। और यहाँ पे बीके पंजली लिखते हैं कि सर जी बेहतरीन डिमांड के लिए, धमाकेदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और नहीं जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड, नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री। और जुड़ चुके हैं समसे, क्या नाम है यहाँ पे, समुंदर सिंह जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। समुंदर सिंह जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग अमन सर जी चल रहा है। और सरोजी सरित जी लिखते हैं कि कार्यक्रम तो शानदार शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों के डिमांड शानदार शानदार शानदार। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि लाजवाब गाने का नगमा है जी। और यहाँ पे यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि लाजवाब सुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और एस खानम जी लिखते हैं कि दिल की गहराई में जाकर लोग वार करते हैं। अच्छा, दिल की गहराई में जाकर लोग वार करते हैं और ऐसी साजिशों को लोग प्यार कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इश्क दी गली विच नो एंट्री, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओ माय गॉड, पता नहीं कहां से इतनी गहराई वाली बातें आप लाती हैं, मेरे तो समझ से पारे है बिल्कुल। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, इस गाने की डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे रविंदर सानू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रविंदर सानू जी। और लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार के सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, अमन जी आपको भी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं भी आपके प्रोग्राम से जुड़ चुका हूँ और कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, और आपका सबका रेडियो दोस्त रविंदर सानू ताजपुर गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं ताजपुर गाजीपुर यूपी से रविंदर सानू जी। और ये तो हमारे वो दोस्त हैं जब से रेडियो हॉटस्टार स्टार्ट हुआ है, यानी कि तब से वो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत दिन बाद आए हैं आपका, अच्छा लगा। और विजय राज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि सर जी नमस्ते, हम भी जुड़ गए हैं शानदार प्रोग्राम में, ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि अदरणी अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों का गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो अमीना खान जी का है, और अमीना खान जी आती है तो ये भी यानी कि लव का फीवर लेके आई हुई है, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे जाकिर मुलानी जी जुड़ चुके हैं अगले हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक के साथ। लिखते हैं कि अगले हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक होंगे यानी कि विवेक मुमुशरान, आदित्य पंचोली और मुकुल देव और सुमित सहगल और जुगल हंसराज जी। थैंक यू सो मच जाकिर मुलानी जी, इतने प्यारे प्यारे एक्टर कहाँ कहाँ से चुन के लाते हैं। ओ माई गॉड, सच में हम तो नाम भी नहीं सुनते हैं और आप ही हमें इन सब के गाने सुनवाते हैं। सच में थैंक यू सो मच आपका आपके प्यार के लिए। ओके, और इसी बात पर फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। और सैयद यूनुस जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सैयद यूनुस जी। और यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं शानदार डिमांड है, वाह मजा आ गया सच में। और संध्या पटेल जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, दिल खुश कर दिया एकदम। आत्माराम पाटिल जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: भाईजान जाकिर मुलानी, इनको अच्छी थीम देने के लिए 10 बार शुक्रिया। शुक्रिया दोस्त, मैं आत्माराम पाटिल लिया बुलढाणा महाराष्ट्र से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आत्माराम पाटिल जी आपका भी। और यहाँ पे लिखते हैं यानी प्रियंका जी का नाइस सॉन्ग, लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया सुन के। बीके पंची लिखते हैं कि सर जी बहुत ही सुपर हिट डिमांड है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: मिसेस अमरनाथ खान,
0: यस सर,
2: शी ऑलवेज ब्रिंग वेरी यूनिक सॉन्ग, अ वेरी न्यू सॉन्ग आई नेवर हर्ड बिफोर। I'm so happy her choice. Thank you so very much and thank you for your kind words to Mrs. Simran.
0: Okay. थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि अमीना खान जी की पसंद बेहतरीन, लाजवाब, सुनकर दिल खुश हो गया है। ओके, और विजय राज जी लिखते हैं वाह वाह वाह वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार डिमांड है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, थैंक यू सो मच अमीना खान जी। और एस खानम जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी, बिल्कुल। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे बीके पंत जी का है और ये कहते हैं कि धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। भाई सच में धीरे धीरे से आना, लेकिन आना जरूर है कि नहीं। इंजॉय द ट्रैक, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए बहुत सारे। अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और ओके, और यहाँ पे सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि आशिकी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। संतोष गौंड जी लिखते हैं कि अमन साहब जी बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है और आपका सब रिक्वेस्ट में आया गया है, कोई बात नहीं, और वो जरूर हो जाएगा, ये प्ले टेंशन मत लीजिए।

0: क्या बात है प्रियंका जी,
1: तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
0: बता दीजिए, बता दीजिए।
1: वेरी नाइस सॉन्ग अमन जी, वेरी नाइस।
0: जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे एस खानम जी लिखते हैं वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और यहाँ बीके पंच जी लिखते हैं सर जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह क्या बात है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, धन्यवाद देते हैं और धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ऑसम डिमांड है। नाहिद अंसारी जी लिखते हैं कि सुपर्ब डिमांड के लिए बीके पंच जी, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बीके पंजी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गजानन सरकार लिखते हैं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आशिकी का बेहतरीन ये नगमा, मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे शाहिद अंसारी।

0: बिल्कुल तेरा नाम से जुड़ गया मेरा नाम, और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अकबर खान जी। और अजय भगत जी लिखते की लाजवाब गाना चल रहा है जी, बिल्कुल। और सरवेज भगत जी क्या करते हैं?
1: अरजय अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं शाहिद जी के पसंद ऑसम लगा है, धन्यवाद देते हैं। ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ आरजे सोनी जी का, सुनना चाहती है जो जीता वही सिकंदर का ये प्यारा सा नगमा। इंजॉय कीजिए आरजे सोनी जी।

0: वेलकम बैक। और मुन्ना जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मुंबई से। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद ब्यूटीफुल, वाव, मजा आगे सुन के। और ये क्या कहती है, सुनते हैं ना।
1: हेलो अमन सर जी,
0: जी
1: ये भी मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है।
0: अच्छा,
1: और इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको गुनगुनाना चाहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और कुछ
1: चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया
0: क्या बात है
1: कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया। मैंने सुन लिया, नाइस सॉन्ग।
0: बिल्कुल, बहुत प्यारा आपने गाया भी है, अच्छा लगा, ऐसे ही गाते रहिए। और बीके पंत जी लिखते हैं कि सुपर हिट डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं आरजे सोनी जी को। और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: जय अमन सर जी, आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो रश्मि जी का है। और रश्मि जी देखिए, यहाँ पे तो जो जहाँ पे आप यानी कि सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी है, यहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट यानी भेजना होता है। और अगर आपको कुछ मैसेज को टाइप करना है तो मैसेज को टाइप करने के लिए वहां पे जहां पे यानी मैसेज है यानी कि मोड़ से पहले लिखा होगा मैसेज, वहां पे मैसेज पर क्लिक कीजिएगा। और मैसेज पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना नाम और अपना फोन नंबर और पासवर्ड नीचे लिखा होगा रजिस्टर, वहां पे क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। अपना नाम, अपना फोन नंबर डालिए और अपना जो पासवर्ड डालना है वो डालकर वहां से रजिस्टर करके और आप मुझे वहां पे मैसेज कीजिएगा, तो मैसेज मेरे पास आएगा और तब मैं उसको फीडबैक में शामिल करूंगा। ओके, फिलहाल मैं आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। और ये गाना तो मेरा फेवरेट गानों में से एक है, ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हमेशा मेरा ओपनिंग गाना हुआ करता है। और आज आपने इसको सुना, इसके लिए

वेलकम बैक और फीडबैक आए हुए बहुत है। रवि मार्डी से एक नाइस सॉन्ग जी बिल्कुल। और राधा कृष्ण को देखते हैं कि बहुत खूबसूरत नगमा। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। अकबर खान जी लिखते हैं अमन जी जी बिल्कुल आपका गाना तो प्ले होगा ही होगा लेकिन अभी नहीं तो उसमें समय है। और मुन्ना भाई लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग यार मजा आ गया। और जुड़ चुके हैं एमडी फैज आलम जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं वालेकुम सलाम। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी बिल्कुल। और राहेश जी लिखते हैं सुपर हिट अमेजिंग चॉइस के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है जी बिल्कुल। और बीके पंजी लिखते हैं कि ओके मनाज मगन ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया धन्यवाद देते हैं। और हमारी नंदनी माँ लिखती हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी माँ जी सही कहा आपने। और मिसालंगा जी जुड़ चुके हैं वेलकम करते हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है आपको देखकर। और आपको देखकर ये गाना कौन सा साहब लेके आए हुए हैं जरा सा मुझे लिस्ट चेक करना पड़ेगा। शायद लगता है मुझे कुछ कहीं हो सकता है कुछ गलती हो गई हो नो प्रॉब्लम। फिलहाल अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो सुनीता गोप जी का है। और सुनीता गोप जी जब तुझे मैंने देखा नहीं था और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे क्या नाम है उनका संतोष गौंड जी दोनों की एक ही पसंद है। जब तुझे मैंने देखा नहीं था इस तरह मैंने सॉरी यानी कि पहली बार दिल्ली में बेकरार हुआ है सॉरी मैं गलती ही बोल रहा हूँ। इंजॉय कीजिए यानी कि सुनीता गोप जी इस गाने को। और इसी गाने में शामिल है हमारे संतोष गौंड जी भी दोनों की एक ही डिमांड है इंजॉय कीजिए।

0: बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है। और एक गाना मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मैंने उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं लिखा है यार, मुझे दिक्कत हो रही है। अब बहुत सारी फरमाइशें आती हैं और डिमांड जो मतलब क्या ही बताएं, अब लगता है कि छूट गया होगा। अब अगर किसी का, खैर कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारी डिमांड है, लेकिन वो उनका नाम बताना होगा। वो फिल्म यानी के शहद का गाना है आपको देखकर। अब पता नहीं किन्होंने भेजा है, वो मुझे अभी प्ले करना था लेकिन फिलहाल मैंने उसको स्किप कर दिया है, लेकिन अगला मैं गाना लेने वाला हूँ। लेकिन फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किशन पाल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग लग रहा है जी बिल्कुल, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, और गजानंद जी लिखते हैं कि पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है, दोनों दोस्तों की पसंद बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर ऑसम चॉइस के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात पर यहाँ पे सीता गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं मिसाल अंगद जी।
1: हेलो अमन सर जी, मैं मिसाल अंगद, और आपने हमारे ग्रुप का गाना सुनवाया अमन सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैं घर आया तो आपको फीडबैक दे रहा हूँ, गाना मैंने सुना लेकिन फीडबैक नहीं दे रहा था, लेकिन घर जैसे ही घर आया तो मैं दे रहा हूँ अमन सर जी। और अभी जो गाना आपने सुनवाया फरीदीन खान का, ये भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस भाई साहब की ये पसंद होगी जी, इनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी मिसाल अंगद जी। साथ ही साथ यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है बिल्कुल। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और संतोष गौंड जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। बीके पंत जी लिखते हैं कि सुपर हिट फरमाइश पहली बार दिल यू बेकरार हुआ है। हमारे आदरणीय असलम राणा जी लिखते हैं कि अमन भाईजान मैंने भी फरमाइश भेजी थी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, और वो दिखाई नहीं मुझे, कहां आपका नहीं दिख रहा है, कहां है आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट, नहीं भेजा है तो फिर से दोबारा भेज दीजिए, क्या बात है, नो प्रॉब्लम। नहीं अभी अभी तक आपका आया नहीं है, आता तो जरूर मुझे दिखता, अभी तक नहीं आया है आपका। और राम कुमार मिस्त्री जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है दोनों दोस्तों का, मजा आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वह हमारे ग्रुप फरमाइश से अशोक देशमुख जी की ग्रुप, उसमें शामिल है सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और सैयद यूनु जी, लेकिन ऑडियो सिर्फ मैं सुनवाऊंगा आपको सर्वेश भगत जी की, सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार नमस्ते जी, आज हमारा फरमाइश का फिल्म है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और गाने के बोल जब से देखा खोए खोए रहते हैं, हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद, हम सर्वेश भगत हजरतंदहा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, बस किशोर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश, सोनी कुमार, मनु कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, आपका सपन, आपका सुंदरता की मूरत जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, आर जे आर सभी भाई, आर सभी बहन, आर सभी लिसनर, इसमें शामिल सभी को सुनर जी का, जयराम जी के,
0: आत्माराम पाटिल जी का भी ऑडियो है जहाँ तक मुझे याद है, यस सुनते हैं। बोलिए जी।
3: अमन खान सर जी,
0: बोलिए जी,
3: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार जी, मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिया, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से, आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार पर आज स्टार ऑफ द वीक में फरदीन खान, फैजल खान, जावेद जाफरी, दीपक तिजोरी, ये चार मेहमान हैं सर, तो इन्होंने का मैंने फरदीन पर एक मूवी लाई है सर, मूवी का नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, सिंगर है कुमार सानू और अलका याज्ञिक जी, आर्टिस्ट है आमिर खान, जूही चावला, म्यूजिक है अनु मलिक जी का, और गीतकार है सर समीर जी, और गाने के बोल है जब से देखा तुमको खोए खोए रहते हो, जब से देखा तुमको खोए खोए रहते हैं, तो सबसे पहले गीत मैं आपको आपकी सुंदरता की मूरत को अशोक कुमार, अशोक देशमुख जी, सैयद यूनुस जी, सर्वेश भगत जी, खुले वक्त संजू बहू,
0: और क्या हुआ, बस कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, अपने गाने को प्ले कर दिया। और आत्माराम जी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा जल्द से जल्द।

0: जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए जागे जागे सोए सोए रहते हैं यार, क्या करें। बीके पंची लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और असलम राणा जी, आपका डिमांड आ चुका है मेरे पास बिल्कुल। और इसी गाने में हमारे शामिल हो रहे हैं भाई, ये जो गाना है अभी जो यानी प्ले हो रहा है, जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं, अनिल मेहता जी। तो आप भी इंजॉय कीजिए अनिल मेहता जी इस गाने को, और ये फीडबैक शामिल करते हैं।
1: हरजय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा चार भाई का फरमाइश, हमारा सैयद जी का, आत्माराम पाटिल जी का, अशोक देशमुख जी का, चारों भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, थैंक यू।
0: ओके, तो अभी अभी, और अभी अभी बता दो, इसी गाने के लिए डिमांड आई थी हमारे अनिल मेहता जी का, जो सुनते हैं सूरत गुजरात से, तो उनका भी इसी में शामिल करता हूँ मैं, यानी कि पांच दोस्त हो गए अब। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिली जुली डिमांड लाजवाब। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: नमस्कार सर्वेश भगत जी, आप तो पूरे दिन जुड़े रहते हो कार्यक्रम में, और कहते हैं पूरे दिन खोए खोए रहते हैं, कहाँ खोए खोए रहते हो,
0: आप
2: तो कार्यक्रम में हमेशा फीडबैक के साथ साथ रहते हो।
0: बिल्कुल रहते हैं जी। और यहाँ पे लिखती है यानी प्रियंका जी, जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है जी बिल्कुल। और जितेंद्र जी लेते हैं हम भी जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका भी जितेंद्र जी। और नहीं जी लेते हैं, वाव वंडरफुल चॉइस है, सभी दोस्तों की बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और काजल झक्का जी लेते हैं कि शानदार पसंद चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और ये सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसा अंगद और अभी जो गाना आत्माराम पाटिल जी की ग्रुप का आपने सुनवाया, जो कुछ तुम कहो कुछ हम कहे इस फिल्म का गाना था, ये गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और अमन सर जी, आज मैंने आपका नोटिफिकेशन देखा जो नई आरजे रेडियो हॉटस्टार में शामिल होने वाली है, जो आरजे आकांक्षा के नाम पर है, तो आकांक्षा कब कार्यक्रम करने वाली है और कौन से कार्यक्रम करने वाली है, तो इनके बारे में हमको जरूर और पूरी तरह से जानकारी दीजिए, धन्यवाद।
0: ओके, बता दूं कि आरजे आकांक्षा जी एक बहुत ही बेस्ट एंड प्रोफेशनल आरजे हैं और बहुत जल्दी रेडियो हॉटस्टार पे आने वाली हैं, और ये हर रोज शाम के यानी 5 बजे शो करेंगी। और आरजे वंशिका जी का शो 1 घंटा पीछे जाएगा, जैसे कि अब वो यानी 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो शो करेंगी, और 5 बजे से आरजे आकांक्षा जी 6 बजे तक शो करेंगी, और 6:30 के बाद मैं आऊंगा, लेकिन वो सोमवार से शो करने वाली है, 100% चांस तो यही है। ऐसे आज उनका यानी टेस्ट भी हो सकता है रात में। ओके, और राधा कृष्ण गोप दिखते हैं कि सभी दोस्तों का डिमांड बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं। ओके, और यहाँ एमडी फैज जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
4: वाह, इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। इसी बात पर दो लाइनें हैं।
0: कह दीजिए।
4: आँखों की चमक, आँखों की चमक, पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी, लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारे ही आरजू में,
0: है है है है।
4: फिर कैसे कहूँ ना कि मेरी जान
0: हो तुम, सच में
4: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एमडी फैज आलम मोहिद्दीन।
0: बहुत अच्छा आपने बोला है भाई, और सच में मजा आ गया। मुन्ना जी लिखते हैं वाह वंडरफुल सॉन्ग है जी बिल्कुल। और लिखते हैं गजानन सुरकार जी की, जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं, बहुत ही लाजवाब गाना सुनकर मजा ही आ गया भाई। और राहुल पासी जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
5: गुड इवनिंग अमन सर जी,
0: गुड इवनिंग,
5: आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है,
0: थैंक यू सो मच,
5: अभी जो सॉन्ग चला बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और क्या नाम है इनका, नाम है धरती राजी, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं धरती राजी। ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे मुन्ना जी का है, मुन्ना जी मुंबई से, और सुनना चाहते हैं दर्द सहेंगे इंजॉय।

0: वेलकम बैक, सच में प्यार में तेरे सनम। और वैसे फीडबैक आए हुए बहुत सारे, ये लिखते हैं कि हेलो सर जी नमस्कार, मेरा नाम है दयानंद। अच्छा दयानंद जी वेलकम है आपका। लिखते झारखंड से हूँ मैं और मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ आपके रेडियो में, और सॉन्ग सुना हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी गाने और सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यानी दयानंद जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि मुन्ना जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं मुन्ना जी को। और राम कुमार मिश्री जी लिखते हैं कि दर्द सहेंगे कुछ ना कहेंगे, चुप रहेंगे हम प्यार में तेरे संग, लाजवाब सुन कम सुनने को मिला, मजा आ गया। आज के गाने की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, आज के सारे गाने बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं जी। अभी सुनते रहिए, सभी गाने अच्छे अच्छे आने वाले हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना चल रहा है, प्रोग्राम भी बहुत शानदार चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और मुन्ना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड अमन भाईजान मेरा गाना प्ले करने के लिए, वेलकम है जी आपका भी। और नाहिद अंसारी जी लिखते हैं कि वाओ मुन्ना जी शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि मुन्ना जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी जी, बिल्कुल। और ये क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन सर जी,
0: जी बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया दर्द सहेंगे कुछ ना कहेंगे, अमन सर जी ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है। और क्या गाना सुनवाया है, जिस भाई साहब की पसंद है इनको मैं 100 तोहफों की सलामी जरूर दूंगा अमन सर जी। और आप जिस प्रकार गाना गाया और जो नेक्स्ट अंतर आपने गाया अमन सर जी, बहुत खुश कर दिया आपने दिल, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद।
0: ओके जी धन्यवाद, मैं भी आपको देना चाहूंगा अपना आपने फीडबैक दिया हो। ओके, और ये क्या कहते हैं, सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम, लिखते हैं सुपर फरमाइश जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को सुनवाने के लिए। MD फैज जी लिखते हैं वाओ आज के प्रोग्राम में बहुत ही शानदार शानदार गाने प्ले हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दर्द सहेंगे कुछ ना कहेंगे, प्यार में तेरे सनम बहुत ही लाजवाब डिमांड है जी। और यहाँ एस खानम जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है पर हम तो ना दर्द सहेंगे और ना चुप रहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे बताइए तो आप ही। और बीके पंच जी लिखते हैं सर जी ये फरमाइश बहुत ही बेहतरीन लगी है, डिमांड धन्यवाद। और बलदेव राज जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे दोस्त कहाँ हैं भाई, हमारे यार जस बरार पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। नंदनी मालिक जी के सुपरहिट गाना है जी बिल्कुल। और यहाँ पे जुड़ चुकी है नाम है इनका यानी सिया जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सिया जी आपका। और गोविंदा खंडाटे जी भी जुड़ चुके हैं आपका भी वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है काजल झक्का जी, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं, इंजॉय कीजिए काजल झक्का जी, स्पेशली डेडिकेट है मिठू मियां जी को। ओके

0: बिल्कुल आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। और वैसे फीडबैक भी आ गया है, और यहाँ पे सिया जी, हाँ बिल्कुल आपका गाना जरूर मैं प्ले कर रहा हूँ, अगला ही गाना आपका प्ले होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे परमोल कुमार लिखते हैं कि काजल जी का डिमांड मुझे बहुत ही झक्कास लगा है। और बलदेव राज जी लिखते हैं कि ऑसम ऑसम ऑसम सॉन्ग है। गजानन जी लिखते हैं कि ये काजल जी का डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आया। बीके पंत जी लिखते हैं सर जी सुपर फरमाइश है जी बिल्कुल। और यह प्रियंका जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी, ये भी मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो कि आशिकी मूवी का है, और ये भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके ओके।
1: मेरा दिल तेरे लिए धड़ा

बहुत प्यारा गाया आपने, सच में मजा आ गया भाई। नाजिम दिल सिंह सुपर सॉन्ग है और राधा कृष्ण गोपी ने यहाँ पे काजल जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। नंदिनी माँ लिखती है कि ये काजल जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी और एस खानम जी लिखते हैं कि अच्छा ओहो हो आई हेट यू मैडली ओके कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये अगला जो डिमांड है यहाँ पे सिया जी का है और सिया जी एंजॉय कीजिए धड़कन में तुम।

सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं राजू सिंह जी। लिखते हैं कि हेलो अमन सर जी नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ राजू सिंह जी और आपका प्रोग्राम का मैं मजा ले रहा हूँ। बहुत मस्त मस्त और सुपर सुपर हिट गाने चल रहे हैं एक से बढ़कर एक, और सभी दोस्तों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। ओके जी, ओके, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। राजू पासी जी लिखते हैं कि आशिकी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं काजल झटका जी को। और रवि मार्ड जी लिखते हैं कि दिल मेरा अकेला बहुत ही शानदार, आज के सभी गाने एक सब एक चल रहे हैं, मजा आ रहा है प्रोग्राम को सुनने में। अजय कुछ जी लिखते हैं कि ये तो गाना सदाबहार सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और बीके पंत जी लिखते हैं कि सुपरहिट शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है जी, बिल्कुल। और एमडी फैज जी लिखते हैं जी बिल्कुल लाजवाब डिमांड है, मजा ही आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और प्रियंका जी लिखते हैं

कहते हैं कि अमन जी खा कसम खा वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, और प्रमोद कुमार जी भी कुछ यानी कि खाने वाले कसम। एंजॉय कीजिए इस गाने को। और इसी गाने में के साथ हमारे यानी कि एक साहब और भी है, क्या नाम है इनका, MD फैज आलम जी, इनकी भी सुन लेते हैं।

ये भी गाना बहुत ही प्यारा है और सॉन्ग इन विनर हो सकता है, लेकिन दो दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं, इसीलिए सॉन्ग विनर किसी एक को बनाना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है, इसलिए सॉरी, गाना अच्छा है मतलब।

0: सॉन्ग है जी बिल्कुल। और यहाँ राहुल पासी जी लिखते हैं एमडी फैजी का गाना और प्रमोद जी का, दोनों का शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं दोनों को। और गजानन जी लिखते हैं कि दोस्त यानी प्रमोद जी और एमडी फैजी दोनों की पसंद बहुत ही शानदार, सुनकर मजा आ गया बिल्कुल। और अजय कुछ लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है बिल्कुल। और बीके पंत जी लिखते हैं सर जी बहुत ही प्यारा डिमांड है, मजा आ रहा है सुन के। और प्रियंका जी लिखते हैं बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नगमा, दिल खुश हो गया। एमडी फैजी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: आपका दिल से शुक्रिया मेरी डिमांड पूरी करने के लिए भाईजान, इसी बात पर दो लाइन है।
0: कहिए कहिए।
1: लाजमी है तेरे चेहरे पे तिल होना।
0: अच्छा।
1: लाजमी है तेरे चेहरे
0: पे तिल होना, वाह वाह क्या बात है।
1: सुना है हसीन चेहरों पे पहरेदारियां भी जरूरी होती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: बहुत शुक्रिया एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: और भाई मैं तो यही कहूंगा कि गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है, और जहाँ मेरी जाना में वहाँ मेरा दिल है, क्यों है ना। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं दोनों दोस्तों की पसंद शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड है, बहुत ही प्यारा लगा, मजा आ गया सुन के। और नंदनी मार लिखते हैं बहुत ही सुपर बेहतरीन नगमा है जी माजी, इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है, और ये गाना और ये प्लेन ना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोहब्बत की है तुम्हारे लिए।

वेलकम बैक। और फिर एक बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पे असलम राणा जी लेते हैं हमारे आदरणीय दोस्त प्रमोद जी का और एमडी फैज जी का, दोनों की वो दिलकश डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और उनकी पसंद मेरी भी पसंदीदा वाला गानों में से एक है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। नंदनी मालिक जी की बहुत ही प्यारा और सुंदर गाना है जी, बिल्कुल। और बीके पंजी लिखते हैं कि बहुत सुपरहिट डिमांड है मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह मजा आ गया, थैंक यू सो मच सर्वजीत सेठी जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि सर्वजीत सेठी जी का पसंद सड़क फिल्म का शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और प्रियंका जी लिखते हैं वाह बहुत खूब बहुत अच्छी पसंद है, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं वाह क्या बात है, एकदम झक्काश फरमाइश खूबसूरत गाना, थैंक यू सो मच। एमडी फैज जी लिखते हैं जी सुपर गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, दिल खुश करने है मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। राधा कृष्ण को भी बहुत ही सुपर डिमांड है, धन्यवाद देते हैं।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके जी, अगला जो डिमांड है वो डिम्पी जी का, और डिम्पी जी सभी को डेडिकेट करना चाहती है।

बिल्कुल हम हो गए हैं आपके। और वैसे यहाँ पे एमडी असलम खान जी लिखते हैं कि क्या लिखते हैं जी, बिल्कुल आज आपका गाना प्ले होने वाला है और जल्दी ही मैं कोशिश करता हूँ कि कहाँ फिट करूँ मैं उसका, क्योंकि गुड मॉर्निंग वाला गाना है ना, हमको लग रहा है ऐसा कुछ। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि आर जे अमन जी मैं भी जुड़ गया हूँ जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और साथ ही साथ यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि डीपी जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, हम हो गए आपके। और प्रमोद कुमार लिखते हैं सो ब्यूटीफुल डिमांड है जी, बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं डिम्पी जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। बीके पंच जी लिखते हैं डिम्पी जी का गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इतने प्यारे गाने के लिए। हुकुम चंद जी लिखते हैं हम भी शामिल हो गए हैं, ओके जी, तो वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच डिम्पी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी अभिषेक तिवारी जी। और शौर्य सिंह जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड चल रहा है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है किन का है जरा सा देखना पड़ेगा मुझे। और ये डिमांड है अजय भगत जी सुनते हैं, आपकी पसंद का ये गाना प्यार के बदले प्यार मिलेगा, बिल्कुल प्यार मिलेगा।

0: ओके वेलकम बैक है और बहुत सारे फीडबैक भी है मेरे पास। अनिल मेहता जी लिखते हैं सुपर गाने की डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और गजानन जी लिखते हैं कि अजय भगत जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं अजय भगत जी को। और अर्चिया जी लिखते हैं कि किसी को उनसे मिलकर इष्ट हुआ, लिखते हैं कि किसी को उनसे मिलकर इष्ट हुआ और किसी को उनकी दुआओं से इष्ट हुआ, और ना देखा ना मिले हम एक दूसरे को, और मुझे तो उनके लफ्जों से इश्क हुआ। औसम हम सबकी पसंद लाजवाब है, थैंक यू सो मच सिया जी। और अब प्रियंका जी लिखती है वाह क्या गाना है, प्यार के बदले प्यार मिलेगा। और यहाँ शौर्य सिंह जी लिखते हैं कि सर जी प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ लेकिन फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है आप सुनिए वही बहुत है। अजय भगत जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक
1: जी डिम्पी जी का भी डिमांड बहुत अच्छा था, अच्छा लगा हम हो गए आपके। और ये भी सॉन्ग जो चल रहा है ये भी डिमांड जबरदस्त है, मज़ा आ रहा है प्रोग्राम में एक से एक गाना सुनने के बाद। एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके जी वेलकम है आपका भी। और बीके पंजी लिखते हैं सर जी ये भी पसंद बहुत ही शानदार है, धन्यवाद देते हैं अजय भगत जी को। ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या

0: मेरी किस्मत में क्या है रब्बा, मेरी किस्मत में क्या लिखा रब्बा।
1: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक, मजा आ गया।
2: धन्यवाद देते हैं आपको भी रवि मोहड़े जी। नाजिम जी लिखते हैं औसम सॉन्ग है बिल्कुल, और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं प्यार के बदले दिलदार मिलेगा, अच्छा प्यार मिलेगा जी बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा गाना लगा है, और ये क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
3: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी। अमन सर जी, अब तक चले फरमाइश में, जैसे कि अभी फरमाइश चल रही है अजय भगत जी, इनकी फरमाइश के पहले आपने डिम्पी जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले हमारे मित्र सर्वजय शेट्टी जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले प्रमोद कुमार जी, और मेरे मित्र MD फैज आलम जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले अरुण मंडल जी, शिया जी, काजल झा जी, मुन्ना जी, इनकी अपने बैक फरमाइश चलाई सर, उनके पहले हमारे मित्र आदरणीय सर्वज भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, अशोक देशमुख जी, सैयद इनू जी और अनिल मेहता जी, इन 5 दोस्तों की आपने मिलजुल फरमाइश चले सर, और उनके पहले सुनीता गोप जी और संतोष गौंड जी, इन दोनों की आपने मिलजुल फरमाइश चले सर, उनके पहले RJ सोनी जी, रश्मि जी, सैयद अंसारी जी, VK पंत जी, अमीना खान जी, इनकी आपने बैक टू बैक फरमाइश चले सर, और उनके पहले हमारे संध्या पटेल जी और सुनील कुमार जी, इन दोनों की आपने मिलजुल फरमाइश चलाई सर, उनके पहले हमारे ग्रुप फरमाइश को चलाया सर, और हमारे ग्रुप फरमाइश के पहले बिट्टू कुमार जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, और आज के कार्यक्रम का आपका ओपनिंग गीत। अमन सर जी, अब तक चले फरमाइश में सभी गीत सुपर और सुपर से ऊपर रहे, और अब तक कार्यक्रम जो भी चला सर एकदम लल्लन टॉप चला। अच्छा। आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ, और मैं स्पेशल धन्यवाद बोलूँगा हमारे मित्र जाकिर मुलानी जी को, इन्होंने इतने अच्छे कलाकार को आज हॉटस्टार पर लाया। अमन सर जी, कार्यक्रम बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो रहा है, लल्लन टॉप हो रहा है और रेडबुल हो रहा है सर। अच्छा। आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ, मैं फले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे RJ अमन जी के साथ, मैं फले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
2: धन्यवाद देते हैं आपको भी, और सर्वजीत से भी क्या कहते हैं भी सुन लेते हैं।
4: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया, और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब चल रहा है, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजी सेठी फाजिलका पंजाब से,
2: वेलकम है आपका भी। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी को खूब मेरा प्यार नमस्कार है, और प्रोग्राम शानदार हो रहा है, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब है, और फूल वाला संजू भाव जी का फीडबैक मुझे अच्छा लगा। ओके, और ओके, अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों की, एक हमारे यानी कि किशन पाल शाक्या जी हैं और दूसरे हैं राहुल पासी जी, दोनों का एक ही डिमांड है, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। एंजॉय कीजिए इतने प्यारे।

0: बिल्कुल, जो बीत गए वो दौर ना आएगा और इस दिल में सिवा तेरे तेरे कोई और ना आएगा। वैसे फिर बैग भी आ गया है मेरे पास, सुनते
1: हैं। आरजे अमन सर जी।
0: जी जी बोलिए।
1: जय भगत जी अपने गाने में शामिल किए, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे विज्ञापन जी लिखते हैं कि सर जी बहुत ही सुपर हिट डिमांड है इस गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: दिल दीवानी का डोला दिलदार के लिए। वाह, लाजवाब गाना सुनाया, धन्यवाद कहेंगे। और आर्य अमन सर, आपकी आज की प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, हम भी हमारे गाना सुनने के लिए।
0: आपका गाना बहुत पहले का प्ले हो चुका है, पता ना आप कहाँ थे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं, अमन सर जी

और फूला बाग संजू भाव जी देखते हैं कि ये किशन पाल जी और राहुल जी आप दोनों की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और असलम राणा जी लिखते हैं कि अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं है। और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि हाँ ये आपका एक बार फीडबैक आया ना दोबारा। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत बहुत ही शानदार गाना प्ले हो रहा है। और जी आप आज की हुई हैं यानी विनर, एक गाना और आप सुन सकती हैं। जी बिल्कुल ओके। और अगला जो डिमांड है हमारे असलम राणा जी का है, ये गुड मॉर्निंग इंडिया सुनना चाहते हैं, सुनिए क्या करते हैं।

0: सुविधा है और यहाँ पे पहला ये बनेगी।
1: अजय अमान सर जी MD असलम राना जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा पसंद है। गजानन जी लिखते हैं असलम राना जी का शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फूल भाषण भाव जी लिखते हैं कि हमारे असलम राना जी की फरमाइश मैं पहली बार सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पाटिल जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग भी कुछ अलग ही है और मजा आ गया सुन के इसको। और इसी बात पर अगला जो डिमांड जो पसंद है मैं सुनना चाहता हूँ ये रंजीत जी के पसंद है। और रंजीत जी सुनना चाहते हैं तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, शायद इनका ऑडियो भी आया हुआ है मेरे पास, मैं देखता हूँ। रंजीत जी सुनते हैं।
2: अमन सर जी कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं,
2: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं। आज दीपक तिजोरी जी के गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक और गाने का बोल है तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। ये गीत सबसे पहले आपको डेडिकेट है और आपकी सुंदरता की मूरत को डेडिकेट, और वंशिका जी को भी डेडिकेट है। और

0: तेरी चाहत के दीवाने हुए हम सच में। और गाना यहाँ पे फीडबैक बहुत सारा हुआ और गाना में इनका माखन प्रजापति चलते हमारे को प्ले करने के लिए। आपने कब भेजा है, कहाँ भेजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, बहुत ही शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
1: जी अमन सर जी, रंजीत कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रंजीत जी के पसंद मुझे बेहतरीन लाजवाब, सुनकर मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और मीना खान जी लिखते हैं कि इस आई लाइक दिस सॉन्ग। ओके और ओके ये मेरा फेवरेट गाना है। ओके जी। और नाही जी लिखते हैं कि रंजीत जी के पसंद बहुत ही लाजवाब लगे, धन्यवाद देते हैं। अजय भगत जी लिखते हैं कि तेरी चाहत के दीवाने हुए सुपर पसंद है। और सौर्य सिंह जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब डिमांड है ये बिल्कुल। और प्रियंका जी लिखते हैं कि शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और अशिया जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत ये सॉन्ग है, थैंक यू। ओके और माखन प्रजापति जी, हमने गाना लिखा था आपने नहीं, अरे भाई कब कहाँ लिखा है आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने कहाँ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहीं भेजा ही नहीं है। ओके अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी शिवम जी का। और शिवम जी एंजॉय कीजिए अपने डिमांड को।

बिल्कुल, यानी कि तेरी अश्की में दिल तो क्या हम जान भी लुटा देंगे। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं वाओ, ये भी गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और असलम राणा जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गीत को प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। एक्चुअली अब हर कोई आपके जैसा तो क्या बोलते हैं जानकारी वाला नहीं है सर जी, और मेरे पास भी समय नहीं होता कि मैं सभी गाने को चेक करते रहूं, इसीलिए मुझसे भी गलतियां होती है। और मैं तो सभी पर आग बन के भरोसा करता हूं, जो भेजते हैं मैं प्ले कर देता हूं, है कि नहीं, इसीलिए गलतियां हो जाती है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये शिवम जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, मजा आ गया सुन के। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये शिवम जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं शिवम जी। नहीं जी लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच शिवम जी। और किशन पासी लिखते हैं कि शानदार प्रोग्राम चला आज का, मजा आ गया। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि शिवम जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा, धन्यवाद देते हैं। और माखन प्रजापति जी लिखते हैं कि मुझे आपकी मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अकबर खान जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है तेरी आशिकी में, दिल तो क्या हम जहाँ भी लुटा देंगे। अगला जो डिमांड है नाहिद अंसारी जी का, सभी को डेडिकेट कर दें। तो नाहिद जी एंजॉय कीजिए इतने करेगा।

और नहीं जी, आज आप भी बनते हैं सॉन्ग विनर। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, क्योंकि गाना आपका भी बहुत ही प्यारा लगा है। लेकिन अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो नाजिम जी का है, लेकिन फीडबैक भी बहुत सारे हुए हैं। और यहाँ पे इन प्रियंका जी लिखते हैं, वाह मैंने जिसको चाहा मिल गया, बहुत ही प्यारा गाना लगा है मुझे। और नाहिद जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं, नाहिद जी का डिमांड मुझे बहुत ही मस्त लगा है जी। और गजानंद जी लिखते हैं, नाहिद जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और माखन प्रजापति जी लिखते हैं।

वेलकम बैक और फीडबैक आए हुए हैं। वाह क्या शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। राहित जी लिखते हैं कि नाजिम जी की पसंद मुझे सुपर हिट लगी है, और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग। गजानंद जी लिखते हैं कि हमारी नाजिम जी की भी पसंद बहुत ही अच्छी लगी है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नाजिम जी की च्वाइस बेहतरीन लगी है, और नाजिम जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है जाकिर खान जी की है, और जाकिर खान जी सुनना चाहते हैं क्या, सुनवाते हैं जाकिर खान जी की पसंद। इंजॉय कीजिए आगरा का घाघरा।

ओके वेलकम बैक। और नाहिद जी लिखते हैं कि हाँ इन्होंने अपना गाना भेज दिया है। ओके ठीक है, मैं गाना प्ले करूंगा थोड़ी, मतलब जल्दी प्ले करूंगा, टेंशन मत लीजिए। और मुन्ना जी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन डांसिंग सॉन्ग है, मजा आ गया सुन सुन के। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना भी एकदम मस्त है, थैंक यू जाकिर जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ पे किशन पाल जी लिखते हैं कि शानदार लाजवाब गाना। संदीप प्रताप जी का अगला गाना मैं सुनवाता हूँ आपको, और ये गाना हाय रे एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल हाय रे हाय रे हाय रे, क्या गाना है। ओके जी, और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है जी, बिल्कुल। और संदीप सुतार जी, सच में ये गाना मैंने आज पहली बार सुना है, अच्छा लगा आपकी पसंद मुझे। और राधा कृष्ण को देखते हैं बहुत ही लाजवाब ये नगमा है, अच्छा लग रहा है ये सुनकर। नहीं जी देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश चल रही है, थैंक यू सो मच। और जाकिर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि सो ब्यूटीफुल सॉन्ग है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे एस खानम जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी, बिल्कुल। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मतलब जो आज की यानी कि फर्स्ट हूँ ये विनर अमीना खान जी, उनका गाना मैं प्ले करता हूँ। फिर जो सेकंड विनर है उनका गाना मैं प्ले करूंगा। तो पहले फर्स्ट विनर जी का

ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और ये पहली बार मैंने सुना। अगर एक और होता तो एक और बार विनर बनाता मैं आपको, लेकिन अच्छा लगा गाना। और लिखते हैं यहाँ पे एस प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, और लिखते हैं कि मैं एस प्रसाद यानी कि संजय प्रसाद जी, तो वेलकम है आपका भी। और रवि मार जी लिखते हैं कि हाय रे वाला गाना सुपर हिट लाजवाब लगा है, ओके जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम अमीना खान जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और एस खानम जी लिखते हैं कि वाव वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और अच्छा ओके, यहाँ पे लिखते हैं एस खानम जी कि रिश्ते की गहराई अगर नापनी हो तो रूठ कर देख लो एक बार। अच्छा ये ऐसा भी होता है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, दिल खुश कर दिया, धन्यवाद देते हैं उनको। और यहाँ पे मीना खान लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है, जैसे कि जो सेकंड यानी विनर बनी है नाहिद अंसारी जी, उनकी पसंद, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल जीना सिर्फ मेरे लिए। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं नाइट सॉन्ग है जी बिल्कुल, और नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और राहुल पासी जी लिखते हैं नाही जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही प्यारा लगा है। और बीके पंजी लिखते हैं सर जी सुपरहिट डिमांड है, और नंदनी मालिक लिखते हैं कि ये तो डिमांड सुपरहिट है बिल्कुल। और मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और लिखते हैं मैं तो शुरू से ही सुन रही हूँ। अच्छा ओके जी, तो ये बात है आपने पहले क्यों नहीं मुझे मैसेज किया कि आप शुरू से सुन रही हैं। ओके जी ओके, और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि पिया जी का है, और यानी पिया जी सुनना चाहती हैं वो तेरा गम मेरा गम, तो एंजॉय कीजिए पिया जी।

गॉड, अभी 10 बजने वाला है। ओह माय गॉड, मतलब कि अभी तो 9:59 हो चुके हैं, यानी 10 बजने वाला है।

0: वेलकम बैक, फीडबैक आ गया मेरे पास बहुत सारे, और यहाँ पे राधा कृष्ण को देते हैं सुपर नगमा। धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं ये गाना मंसर जी दिल को छू गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने डिमांड किया है। मुन्ना हमारे यानी मुन्ना जी लिखते हैं मुंबई से, वाओ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी बिल्कुल। और नाहिद जी लिखते हैं वाओ सुपर अमेजिंग पसंद के लिए, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा और यहाँ पे रवि कुमार जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब सुपर हिट पसंद तेरा गम। और प्रियंका जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना मजा आ गया। बीकरपन जी लिखते हैं कि सुपर हिट तेरा गम मेरा गम। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है जी बिल्कुल। इसी बात अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो अकबर खान जी का है, और अकबर खान जी क्या सुनना चाहते हैं तो सुनते हैं इनके ऑडियो को।
1: अस्सलाम वालेकुम अमन जी।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
1: आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ फिल्म नरसिम्हा का।
0: अच्छा।
1: जिसे गाया अमित कुमार ने और अदाकारी की है रवि बैल जी ने। गाना इस प्रकार है,
2: जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां,
0: क्या बात
2: है, के एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान। जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां।
1: इस गाने को डेडिकेट करना चाहता हूँ सबसे पहले अमन जी आपको,
0: थैंक यू,
1: फिर आपकी सुंदरता की मूर्त जी को,
0: के लिए भी।
1: और उसके बाद में रवि मोहड़ा जी, गजानंद सालोकार जी और जितने भी रेडियो होस्टर सुनने वाले सभी साथियों को गाना जरूर सुनाइएगा।
0: एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ जागीर जी लिखते हैं कि ये तेरा गम मेरा गम एक जैसा सॉन्ग बहुत ही प्यारा पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने का रिक्वेस्ट करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि नरसिम्हा का ये गाना मुझे मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और एस प्रसाद जी लिखते हैं कि नहीं सर जी, देखिए आज के थीम पर वो आपका गाना नहीं है ना, इसीलिए नहीं जी लिखते हैं कि लाजवाब बीमार के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि वाह क्या सॉन्ग है, ऑसम डिमांड, थैंक यू सो मच। और बी के पंत जी लिखते हैं कि सुपरहिट डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच अकबर खान जी। और पिया जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये नाइस सॉन्ग है, जाओ तुम चाहे जहां, अच्छा लगा। और ये फिर
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सॉन्ग हमारे मित्र अकबर खान जी का, मजा आ गया गाना सुन के। और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और आपका भी धन्यवाद अमन सर जी इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए, थैंक यू।
0: ओके वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे जुड़ चुके नाम है शिल्पा बेन जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं जाओ तुम जाए जहाँ, अच्छा लगा गाना। इसी बात पर अगला जो डिमांड है आरिफ सिंधी जी का है और सुनना चाहते हैं जुमा जुमा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, तो सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए आरिफ सिंधी जी।

बिल्कुल जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। और इस कारण जी लिखते हैं कि दूसरों की नजरों में ऊपर उठने के लिए लोग अपनों को ही नीचे गिरा देते हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग जी, आपकी बातों में बहुत गहराई होती है। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर और शानदार डिमांड है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी। और बीकेपन जी लिखते हैं कि सुपर हिट फरमाइश और सुपर हिट डिमांड है। अजय कुछ जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, तो अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ हमारे अजय कुछ जी का है। अजय कुछ जी, आपका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ।

अजय कुछ लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए, और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये कुछ अलग ही पसंद है इनका। हाँ, इनका पसंद कुछ अलग ही होता है। और पासी जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत अच्छा लगा, लाजवाब लगा है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है राधा कृष्ण गोप का ही सुनवाता हूँ मैं आपको, एंजॉय कीजिए। और राधा कृष्ण गोप जी हुआ सलाम दिल का जी, एंजॉय कीजिए।

ओ माय गॉड, आज भी यानी कि प्रियंका जी नंबर वन पे चल रही हैं और प्रमोद जी नंबर टू पे चल रहे हैं और राहुल जी नंबर यानी थर्ड पे हैं, नाहे जी फोर पे हैं और राधा कृष्ण गोप जी फाइव पे हैं, अमीना खान जी सिक्स पे हैं एंड गजानंद जी हैं यानी सेवन पे, बीके पंत जी हैं एट पे और नाइन पे है एस खानम जी और टेन पे है एमडी फैज आलम जी। सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई।

0: वेलकम बैक और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: ये गाना तो सर जी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है, मजा आ गया। पॉडकास्ट में और सुनूंगा इसको।
0: ओके जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये गाना मुझे भी। और ना ही जी लेते हैं राधा किशन गोप जी के पसंद बेहतरीन, तो राधा किशन गोप जी आपको भी बनाते हैं हम सॉन्ग विनर। और राधा किशन गोप जी लेते हैं मेरे गाने को बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि राधा किशन गोप जी की डिमांड सच में औसम है। और राहुल पासी जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं इनको। और प्रियंका जी लिखते हैं कि आज तो सबकी पसंद बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल शायदा सोने वाला है मैं जानता हूँ। मीना जी लिखते हैं कि वाह ये नंबर वन वाली हुई ना बात। और अच्छा नंबर वाली बात सबको समझ में नहीं आती है जी, जो दोस्त यहाँ पे मैसेज करते हैं उनका लीडर बोर्ड में वहाँ नंबर शो करता है कि कौन नंबर वन पे है कौन नंबर टू पे है। आप देखिएगा ना जहाँ पे मोर में क्लिक कीजिएगा तो मोर में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे एक आएगा लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड में वहाँ शो करेगा कि कौन नंबर वन पे चल रहा है मैसेज करने में, कौन आगे भाग रहा है। ओके तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, पहले दो दोस्तों की पसंद कर दो फिर मैं कॉल लगाऊंगा। दो दोस्तों की पसंद है उसमें है हमारे किनका मैं बता दूं, आर्यन राज जी हैं। और आर्यन राज जी के साथ साथ एक दोस्त और भी हैं उनका हुकुम चंद जांगिड़ जी, ये दोनों की एक ही पसंद है और वो है कितने दूर और कितने पास। तो आप दोनों की पसंद सुना रहा हूँ, इंजॉय कीजिए कितने दूर कितने पास।

0: कॉल लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। कॉल नहीं लग रहा है। हाँ लग गया। बहुत बहुत आपको आपका वेलकम है प्रियंका जी, आज की भी विनर बनी है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: एकदम पूरा धमाल मचा दी है आप मैसेज करने में।
1: हाँ बस ऐसे मिल गया, टाइम तो कर दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है, दो दिन से लगातार विनर बन रही है। ओके जी, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज आप अपनी पसंद का ही कुछ सुना दो, आपकी पसंद ही हमारी पसंद बन जाएगी।
0: ओके तो चलिए सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का एक गाना। जी बिल्कुल, अच्छा सा सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू,
0: वेलकम, गुड नाइट।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आए हुए बहुत सारे और रामकेश जी लेते वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है और मीना कुमारी जी लेते ओ माय गॉड ये बहुत अच्छा लगा आज का ये वो की गाना जी और एस खान जी लिखते हैं वाह वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग है जी ओके और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह क्या बात है मजा आ गया सुनकर मेरा फेवरेट सॉन्ग है और थैंक यू सो मच और नाहिद जी लिखते हैं कि वाह सुपर हिट फरमाइश है और यहाँ पे प्रियंका जी क्या कहते सुनते हैं
1: थैंक यू अमन सर आपने बहुत ही सुंदर सॉन्ग सुनाया आपकी पसंद का थैंक यू वेरी मच
0: वेलकम जी और यहाँ पे यानी कृष्ण पाल जी लिखते हैं कि आपका गाना बहुत पहले प्ले हो चुका है भाई कहाँ रहते हैं आप लोग राहुल पासी जी लेते हैं कि अमन सर जी दोनों गाने अच्छे लगे हैं जी बिल्कुल और
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232 तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना बजाते रहो दिल से
0: ओ माय गॉड अभी समय हो चुका है 10:33 और मैंने देखा नहीं समय

ओके, तो इसी गाने के साथ आप मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। और सभी दोस्तों के गाने को मैं प्लेलिस्ट में लगा रहा हूँ, एंजॉय करते रहिएगा, सुनते रहिएगा।

रूप की वो मंग जैसे हिरनी का अंग जैसे मिट्टी हो खजूर।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
2: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
3: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
4: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे।
5: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधरा का और शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: ये जिसको रतन एक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान है। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत जिनकी भारिया सीता माता को तुम छल से हर लाए हो।
2: बस बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें, इसकी पूछ जला दी जाए।
1: महाराज रावण यम दिन चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं।

महाराज रावण श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, श्री एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम।